मैंने सुना है कि जब लोग प्रे करते हैं या जोर से हंसते हैं, रोते हैं या फिर किस करते हैं तो आंखें बंद हो जाती हैं। क्योंकि कुछ चीजें सिर्फ दिल से महसूस की जाती हैं।

0: मैं भूला रास्ता,
1: रास्ते पे आ जा।
0: मैं थाम लूं भैया,
1: मत छेड़ो सैया।
0: तुम दिल मत तोड़ो,
1: तुम आंचल छोड़ो।
0: तुम काहे रूठी,
1: मेरी चूड़ी टूटी,
0: दिल मेरा टूटा।
1: चल हट जा झूठा,
2: तो नाच में गाऊं,
1: तो बैठ में जाऊं।
2: मुश्किल है जाना,
1: तू है दीवाना।
0: मुझे अंग लगा ले,
1: बस रंग लगा ले।
0: नीला के पीला,
1: नीला ना पीला,
0: क्या लाल गुलाबी,
1: तू बोलो भाभी।